असंख मूर्ख अंध घोर संघ जोर राम घोर संघ अमर कर जाए जोर असंख गल बढ़ हत्या कमाए संग बाबी बाप कर जाए असंघ कूड़े आर कूड़े विराए असंख मलेश मल पाख खाए संघ।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला। राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है, आठाओ नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही। पंच राग नी संग उचर ही, प्रथम भैरवी बिलावली। पुनिया की गाव है बंगली, पुन असलेख की पही बारी। भैरो की पंचो नारी, पंच महर्ख दिसाख सुनाव है। बंगालम माध माधव गाव है, ललत बिलाव लगाव ही। अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है। गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आल अप है। संग रागनी पांचो थप है, गुण करी अरदेव गंधारी। गंधारी सी हुती उचारी तनासरी, ये पांचो गाई। माल राग कौशक संगलाई, मारू मस्तंग मेवारा। प्रवल चंड कौशक उभारा, खौखटे पौरानंद गाय। अष्टमाल कौशक संगलाय, पुनु आय हिंडोल। पंचनार संग अष्ट सोत उठ है, तान कलोल गायन तार मिलावही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहिरी लै पार जा, संगलाई पांचो वार जा। सुरमानंद पास करो आए, चंद्र बिंब मंगलन सोहाए। सरसबान ओ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। आसठ पुत्र मैं कहे सवारी, पुण्य आई दीपक की बारी। कशेली पट मंजरी टोडी कही अला, का मोदी ओ गुजरी। संग दीपक के थाप,

अठारह दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत हया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावणियावो हरि तेरा मंजनी वसाया है नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया।

संत साजन पए सरसे पूरे गुरते सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भरपू बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए

डोलन ते रखो प्रभु नानक ते कर हथ दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है अठौ नंदन प्रथम राग, भैरो वै कर ही पंच राग नि संग उचर ही।

कर्म मिले नाही ठाकर हैया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू